0: 리닉 데레드 투나요 지금 그 리니스와 마우스 지금 이나 지금 리닉 그 정돈 다 리닉은 따가 아리나 저거 다 지금 제나이나 저거 뭐 리닉 마후 자던 나 티나노 왜 요즘 그대로 왜 진짜 되게 생각 뭐 나다 지금 그래서 나한테 왜 그 칸 저 잘 가는 제 따로 뭐 그때 정대 있거든요
1: 지지
0: 리닉 정대 빨 뭐 어떻게 그 그걸 지치는 이제 뭐가 다른 거 리닉 정대 주들이 그냥 뭐 지금 리닉인데 지금 chosila sopa, taga chung chondi gila kana ninkhayu kana niko benchukula kana chung satandina maare khatra tang, tana chung chunga ka hata chung soma yongkuna hume kata soma shashii nungi nipu humu erini shashii paanda mungu nilna so thaguk tal irigda khashi soma shirisa nata chung kek chimbo, thani chimbo chimbo kona maare chung baranba la sopa, renjeba la sopa, tamo ka thani chimbo mungu tarangka janato tana puto tonsuna chan tansi kamura humu taga chathona taga tiyo suna chung
2: अटची सचिन दना तो जकुनु गल देर से समय देर से और जी
1: जी जी
2: जी ने मोन जना दा मन तारन की से न थवा के से नगे हस ना चीज दो रीजन ट्रक कुछ ना छदन ट्रक कुछ ना लोता जी कुछ ना रंगा तो से दे मेरा का गा
1: देंग
2: रिनी तक लवर सी के चीज कुछ के दा सुन जी ट्रक गुना आज ये की तो ट्रक कुछ ना लोता जी कुछ ना इंसंस को कुछ ना ताहले लो पेस्टर टिपी गुनिता रिक्का दी दीजु को दीजु शिक्षियो सुनो मसे गेना तो मोनो के तावर जो गाचु जो तमुग नेतो मिलती आने स्पीड ना ता युन्से शेन तो तमुग मैं माज सुना अपने दे यहाँ शिविचु गरम के युन्से को खानू ता बताऊँ कैसे तावर इसने चुको तो कहीं चलता तारो वुक सजाल जान तो ना जानो सजाल सुना दी ना जिन समग रिक्का रो थासो सुनसो को रिक्का तमु माज तीमा था ना तो संग रिक्तु कुनसिंग मगो मो मग रिक्तु को नंबर देश जिसना ता जो tamar chi maz chi berto ye ter pakani tato ma shong go do jang dabur ringin dar ngi shin ye lan sa ta na ar ni chi ho din da ni chi ko so go jo da san ni chi ko so da mo na ba mo ro mo shong do go mo a te te de ta chi ran ga a chwa a tem ba ta ran ga ran ga yo ni kar ba ta mo go thung go shi mo ni sra chi ma go zin de me na da de ta ni go te ke de thung go kin san de ta ni la de tang ga ni sa yo na ni sa yo na ni kha yo na de jo ᱟᱛᱚ ᱢᱚᱪᱤᱨ ᱱᱟ ᱫᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱤᱜᱩ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱱᱴᱮ ᱠᱚᱥᱚ ᱟᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤᱛ ᱥᱩ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱭᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟ ᱛᱨᱤᱞ ᱛᱚᱢᱤᱧᱟ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱩᱪᱩ ᱱᱤᱨ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱧ ᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱚ ᱪᱤᱜᱩ ᱫᱤᱥᱛᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱜᱩ ᱞᱮᱯᱤ ᱞᱮᱯᱥᱤᱠ ᱫᱤᱠᱟ ᱟ ᱫᱤᱥᱤᱠ ᱫᱤᱠᱟ ᱨᱟ ᱞᱮᱥᱤᱠ ᱫᱤᱠᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱧ ᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱫᱤᱥᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱨᱚᱯᱚ ᱛᱚ ᱨᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱢᱮ ᱯᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱮ ᱡᱮᱢᱚ ᱪᱤᱨ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱥᱤ ᱯᱚᱭᱱᱴ ᱦᱩᱡ ᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱛᱨᱟᱡᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱞᱚᱡᱟ ᱜᱚ ᱞᱮᱥᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱥᱮᱥᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱱᱟ ᱩᱠᱟ ᱱᱟ
1: ᱟᱡᱤ
2: ᱥᱮᱥᱤ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱤᱨ ᱜᱩᱥ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱱᱛᱟ ᱪᱮᱜ ᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱛᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱜᱚᱛᱟ ᱪᱮᱜ ᱛᱮᱠ ᱠᱟᱥᱤᱠ ᱥᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱱᱤᱱᱤ ᱜᱚᱛᱟ ᱵᱟᱨ ᱪᱤ ᱵᱟᱱᱩ ᱜᱚᱱ ᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱦᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱫᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱩᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮ ᱥᱩᱡᱩ ᱞᱤᱥᱟ ᱨᱟᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤ ᱦᱟᱱᱭᱟᱝ ᱧᱮᱧᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱪᱮ ᱵᱚᱞᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱡᱩᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱞᱤᱠᱟᱥᱤᱱ ᱡᱩᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱮᱜ ᱪᱤ ᱞᱚ ᱦᱚᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱟᱭ ᱦᱚᱡᱚᱝ ᱪᱚ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱥᱱᱟ ᱨᱤᱱᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱞ ᱞᱚᱨᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱛᱟᱭ ᱱᱮᱥ ᱠᱚ ᱨᱤᱱᱤᱭᱟ ᱛᱤ ᱫᱮ ᱛᱤᱨ ᱞᱟᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱱᱟ ᱤᱞᱤ ᱞᱟᱠᱛᱤ ᱞᱚᱛᱟ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱩ ᱪᱤ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱚᱭ ᱱᱟ ᱨᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱪᱩ ᱜᱟ
1: ᱫᱮᱝ
2: kanyamu ina taga di ratanga di njagskuna tansan rininda tundanda rininda sikazu ta naatari uchu rinia di tungus taso naatari ringa mnoti ki maaz tongtongo no
1: hmm
2: hapa raga tungu enchi kandanda ringa nisa shekukundanda khayizga maashi naga

0: आज भी शायद
1: अने साम कहने जरूर चंगुरा
0: तेजा तरह ता निम्मोर लीसा में
1: या निम्मो छसे नरा
0: अधि खोसंग माता
1: आ खोसंग मा
0: लेडी खोसंग माता खर्च मुद के लो माई नखचिव जानु आर्टक हामुई तांगा क नीव दगरा माउत ग्रा तो चिको लंगरी रन जुमे या से जोरा ता और जोमल जगब शायद
1: अला ला ता चंबारा लंग
0: तेईख चिको चिका जंगरतुली लोआ कंग शानु जातरा ता खानी शाचुरा निगु खोगने को पांधें जिरिया
1: ता खोगन डारे जिरे मु
0: आने का नामा मेटी था तो सामा अर्गारी योटी सिले खरीर दिच्छर
1: चमच चिकने छापर दो तो था
0: निम्मे नामा गनीली मासल कुंगा और देवी कोने यह कला अवजावी डाली खचिंग बोचिर
1: अलांग अचकन जिग जिचेंगुरा
0: नामी सामा यह जी मेटी छाकें डुवां बोचिर तारों रंगे माथम खाओ जाचिर
1: चांसां हने सेर गुनरा
0: कब देता नामी आमी का मलन डांडा वो मी नामा छोले को न डांडा नामा यूंगे नंग ठग तंगसू शेनंग निगा चगनस गिव चाजिर
1: ओ ता मांड खोतक छोता
0: मांड गा दा होती मापसम सोनी तो अंदक बली चेरी मास चू यूंग तो अर्गा तो
1: अंदक चीज बतांग जा
0: नामा के होम पर तंगू
1: ओ नामा शायी हो तंग जा तो जो मुमा गा गुनी तो अंदक
0: आ रंगा गाने चेंजरा नामी रंगे शाही योतंग ना छमदनी अंगछा चेचे वता ति मसला रंग शुगना रे न्यस योतंग दरे दोली गा गोनस
1: ओना आनीग
0: आनीग नामा शाही योतंग ना छमदी न्य न्यान सुंग नरे छिकंग मरग लगयो नि जीतंग नरे दोली गा गोनस
1: न्यमो गा तो मेको
0: आ ले यो दरे न्यमी ता शाही योतंग ना मावी दंगरची सामनु खोतग रे शाही अंगन चोगन दरे शेरदंग चोंग तमनु खोतग ने दोली गा गोनस
1: अराना साना टाटी कुगा
0: शाही तेरा शिमूज के इंतारी मास छुवार के मरगु नफ्शा नो न्यान सोंग दस
1: शिमू जाएं जो शाही जग ता गैं शिमू की खोट गया
0: शाही जाएं जो शिमू ची ता कल चेरा या
1: कैसे तो
0: खुब जग ना नामी वो मो आमा लीश कां जो गुन रा आमा लोलू यूनी दोल सेर की ना अरे मा आने के कल शाचर
1: या छे के से नरा
0: ओ तता छो आमा सी गो
1: या
0: आमा
1: आमी लोलू यूनी दो चा आमा अरे मा योंगो
0: मरगो मजूर जोजी
1: आमी छे खुमा दशा आमी छोरा छले सोना वाने
0: मरगो वान रे
1: छे छे के जे आमा सोना लेका मंगा मंगा लेगुन रे
0: इना आई लोलुंग शाना नेक नामा लेका यो न मारे से नु
1: ओ मासन सुनी शेले हम तो थाओ
0: टीम छोटा आनी के गना सोंग यंग शान रे
1: यंग छे के शेन रे
0: इना यंग छो आनी सिगो
1: या
0: आई आई आई
1: तो ना शिना में चुका करे निश
0: मैं ना शिसे नो सर चु
1: ता चु थामो मने अ
0: तेरे चं निश शिसे ना ता चीशीरु
1: या या और क्यों
0: या और क्यों आई आई आई
1: तो चेसरा
0: आई ना
1: चु ना या
0: आई ना लुटा
1: चु ना लुक सोना या निश आगु न मरा
0: आई ना चुकी
1: करे और जस्ट तो मुगा नारा उनका का चुका सी ये न्योट गई ना मोज़ के ओका अच्छी ने बोले ता अरंग रंगा तो का ये लोग सी ना खसो ना चु ना सी सी गुने
0: आई
1: यहाँ चुज रा
0: आई चुन चुजी उन मारे
1: सी तो सर का
0: ना आमी आई का ना तो छवाज मेक से न
1: ओ यहाँ शेले हम तो था ओ
0: ओ ले काचांदर का कोई ता यंग और क अरलों से बसंदर
1: तायां जग में
0: खर्जं अरलों से एक चीज सुनना रा नामी मायुग मास चुपूलंग अगना मास के दंग सुनी शुं लोंगा तो अरलों से बसंदो
1: ओ ता नैं क यंग जग नामा के खर गुजरे मु
0: अरसं तीन नंगी लोंगा गोर नुजगनी न्यमु नेव सुनना रा आने न्यासाल हों सुनना रा नामा योच कु थेम सुनना
1: ता सोची चो मेला
0: ले यो ता नामी आनी चिंबा मंडवाज लेंगोनस निमु अनीव ने शेर दंग मंडवाज लंगोनस
1: ओ ता तची छमाइन रे
0: आ छम ले जरे जिनी आनी रे खन जोनस
1: ता छम ये ये तंग गो
0: आ छेन तायंग वो मु अनीव से नी आमी लम दे गोनस वे नामा लंगे मरगे आनी चा गोनर आनी नामा निमु संबु माशु नंग छिग सरवाज और कंग और चोम गोनस
1: ताचे माशे छु छे कंगन गान खता खोंरी चुरे जे तनले ला
0: आ तजिने रे चिम डंगी तोपा इनु इना फाचिर तमोस मंजे मेक
1: अने इलग मेने अर्जनस्तम ततरे
0: आ योंगर जुक सेरजु कानर ता माशे छु न्यू हिजगता तमोस गरे
1: माशे छु अश्चों जो जे मना छोरंगे मशान दो
0: आ ना मशा जि खचिग रामे
1: नि तिना दन जुमे
0: आ या
2: Чувнее ночи Мария.